महानगर पालिका का रेल नगर क्षेत्र में संचालन होने वित्तीय रिक्शा तथा पेट्रोलियम पदार्थ पाठक चलने तीन प्रमुख ऑटो दर्ता तथा संचालन हिजाजत संबंधी सूचना जारी कर नगर पालिका ने ऑटो तथा रिक्शा संचालन व्यवस्थापन तथा नियमन संबंधी कार्य विधि 2082 अनुसार स्थानीय यातायात लाइन व्यवस्थित सुरक्षित ट्राफिक तथा बजार व्यवस्थापन सहज बनाने 30 दिन के पारित कर्ता करना आग्रह कर सूचना अनुसार नगर क्षेत्र में संचालन होने समय तत्व तथा ई रिक्शा ने सूचना प्रकाशित मिति 30 दिन भित्र पांचपुरी नगर पालिका नगर कार्यपालिका कार्यालय में अनुसूची एक बमोजिम निवेदन पेश करी दर्ता करूर्ने निवेदन सदै सवारी थानी को नागरिकता को प्रतिलिपि द्वि प्रति पासपोर्ट साइज को

0: సమయంలో సిట్టింగ్ అనౌన్సర్ ఛాతనకి ప్రపాత పానికి శరీర మౌసమి ప్రకృతి
1: इंटरनेशनल नेता और भेरी भाटकरणी विशिष्टता संबंधी ग्रुप की साझेदारी में दतिया जिला में संचालन हुई हर विपद प्रकटाई उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाभ जारी संदेश

0: సర్వతో విషయం మానవీయ లగం సాధించేది ప్రధాన సంసారం అంతర్క్రియాత్మక రేపు అధ్యాత్మీవన్ సందేశ్.
1: मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरुद्ध सचेतना जगह उद्देश्य लेकर अंतर्क्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम लहर जीवन संदेश में अपना स्वागत था. मैं पुष्पा
0: आज कार्यक्रम को आज हम लोग सपना सपने तत्काल कल्पना प्राथमिक उपचार के विषय में संवाद करेंगे.
1: सपना सब मुने दर्शन तथा कथा सर्पदर्शक मनोरंजन खबरना चीज खबर उठा कि कला विषय में हम सर्पदर्शक विज्ञान डॉक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य जानकारी दिने
0: सर्पदर्शक विरोध तत्काल कल्पना प्राथमिक उपचार और सर्पदर्शक उपचार केन्द्र संकसित विजिला जानकारी दिएका बिन्दु र होम कुमार बोले तिस्ता बिहारका सन्धि
2: हतोत्साहित
1: नामुई तिमी जिन गरी तिम जसिन साप विषमा निरत तिम जसिन साप अन्तर दसाई खतरनाक निरहत अमन तनाव कलशे हानिकारक दिशा सड़क मनी दशलक खंड में प्राय अपन बीस दशलक
0: ठाकुर सात दशलक मनोयन शांत करी बातचीत के क्रम सपदंशक दरमियान चिंता व तनाव न कम कर मदद करी सपदंशक दरमियान हफ्ता अपने जीव स्वास्थ्य समस्या बिना वो हृदय घात समेत विषय का उल्लेख उसे बिन बिन परामर्श के कारण शांत कर पठा बिन स्वाजित शिशु राखा सपदशक भाग चलाए किराए जिंदी सपदशक भाग सुनाई का चट्टा सपदशक ठाउँ टुंग पसी लुगा गहना मुंडी घड़ी असी बात से तुम बजीब का गोपाल बुलाई
1: बरखा छेक अर्थात सब बाहर निस्कन समय में आपन घर आंदर पानर सर सफाई कर सपदश से बज सके था आपन घर आंदर पानर हल्ला खेरा खनस करना फोर मेला व्यवस्थापन के घर सापन कर दशाई में से बाज से दिखा याद करी साफ अस्तय ध्यान खनस फोर मेला में लगता हूँ तथा आहार खोजे में अनाज धरला ठाव में रुख का बजन रचे
0: समय में जो उपचार करने से बिखरा सात दस से थे मेरा ध्यान बचाई से दिखा सापन पर दिशाई से प्रभावित हुए जब्त से जब्त न कक्षा को दिन से उपचार के नमूने ले जाए यही उन्होंने जीवन बचने में आई मदद करता
1: अब पढ़ना सर्पदक्षक बिरामिन तत्काल कल्पना प्राथमिक उपचार के विषय में कुछ श्रोता सहभागी होकर विचार सुनी सर्प प्रसन्न मनुया होगा कर परिवार ने हमारा कसिन व्यवहार करो पड़ा वो क्या करा कि तो हमारा कुछ श्रोता सहभागी होकर पूछा बाकी
3: हमारे पिता लोग कुछ नहीं करी पड़े सुबह जब हम उस जी तरह संसोगे जी के प्रभाव स्वीकार करें.

0: रक्तर पतामसे पचकला काइस हाकपात दाल गुरिगेरा आरा मच्छी शिकार ओखल फूल आयन युक्त खाना नियमित रूपमा खाई
1: ज्ञान छोट कम गरी सन्तुलित खाना खाना रोजी

0: जीवन सम्भव नमूना हुन खोजे यात्रा संरक्षणमा हाम्रो सक्रिय जुटी
1: फसल अनुभव सम्पत्ति आजमानीका कारण छ
0: आदि पिकनिक खाए गए आदि
1: छोरी
0: कार्यालय सामुदायिक वन ओ प्रहरी खबर करी सबजना सुरक्षित तरीका से आगे बुटाई।

क्रियाकलाप नहीं करे, वो अपराध में शरीक होकर सजाए ठेकेदार में बने। डिविजन कार्यालय बढ़ दिया, फोन नंबर 084-24-156।

सही जानकारी पाएगा लोगों उपचार केंद्र कहाँ बाहर आधिकारिक ईश्वरी भाई गोपाल डॉट गुवाहाटी में जाकर आवश्यक जानकारी लिख सकते नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालका साथै व्यक्ति पूर्वाधार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संगठन सहकारीमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्र अन्तर्गत विश्वभर

0: प्रतियोगिता में भास्करी नगरपालिका में 130 जना खिलाड़ी सहभागी मिटीवाट नगर खेल को विकास समिति भास्करी कथा से नयन बहादुर खटिक अनुसार प्रतियोगिता का सबको भेद में भास्करी का खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा पड़े समिति बैशाख 16 गति से 25 गति समय भास्करी चार नगर को स्थित कबड़ हाल में खिलाड़ी छनौट कर रहा पालिका स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल कर तथा संभावित खिलाड़ियों का छनौट लेकर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पठाए गए प्रत्यक्ष खतरे जानकारी मार्च मार्च भलीबल कबड्डी व मैराथन लगायत का खेल में भास्करी का खिलाड़ी उत्कृष्ट रनअप टाइम के बाद वर्ष जिला स्तरीय राष्ट्रपति रनिंग खेल में दूसरा स्थान हासिल कर भास्करी नगर पालिका परस्पर प्रथम स्थान जीत रहा। गर्दन में वर्षों से बसोवास करते भूमि दिलीप सुकुमवासी तथा व्यवस्थित उपज राज्य से पूर्व कांटा के उद्यमन तत्काल संयुक्त भूमि अधिकार संघर्ष समिति मतलब आज गर्दिया आज बर्दिया संयुक्त भूमि अधिकार संघर्ष समिति पत्रकार सम्मेलन में श्री महाकर्ण को डिविजन बोर्ड कार्यालय 15 दिने सूचना जारी करते सामुदायिक पर्व क्षेत्र पर घर तहरा हटाने तथा खेतीपाती विकिरण जगह खाली करना निर्देशन निर्वाचन स्थानीय तहसील मार्ग यहाँ का राष्ट्र संघर्ष समिति 21 बैशाख 2023 में जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री चार बुटे मांग पत्र बुझाई सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित का उचित व्यवस्थापन कर महाकरण उसे 25 बैशाख 2023 में सर्वोच्च अदालत तत्काल बस्ती नहीं उठाए सरकार का नवमान करीब आदेश जारी कर सर्वोच्च न्यायाधीश पार्षद संसद पार्टी का कोर्ट में स्थित बस्ती में ध्वजा चलाएर पार्षद स्थानीय में ठप जांच कर संघर्ष समिति का कार्यालय संघर्ष समिति घास बासों का बास का अधिकार सुनिश्चित कर प्रधानमंत्री से मानव अधिकार का हरण विलंबे को मानसिक को भौतिक यातना जुड़े थारू प्रगेल समिति का अध्यक्ष होम बहादुर थारू मनवा अतिक्रमण मनवा संरक्षण आवश्यक अनुसार वाकर नाम और दमन विग्रह मनवा हो मानव वस्तु भी सह अस्तित्व करने की अपना ही पढ़ा पत्र समिति सर्वोच्च अदालत का आदेश का सम्मान करते समाज सहकार्य सहमति का आधार में पीठ पर व्यवस्था करकर सरकार से मांग कर बढ़ा
1: डिविजन कार्यालय बर्दे अंतर्गत बार बर्दे नगर पालिका एक से राहत खाता क्षेत्र का नौके बारी में नुक परिचार कर चित्वा खनन नियंत्रण में लेकर बाद स्थानीय अनुसार चित्वा को तीन से कम बस्ती में नौके बारी आस पास में नियमित रूप में जत्र अदालत पास वन प्रशासन में जानकारी का आयोजित वक्र पास वन कार्यालय का टोली घटना स्थल को कानून समय पास चित्वा खनन नियंत्रण में लेकर सफल किया को डिविजन वन कार्यालय बर्दे वरिष्ठ एक वन अधिकृत राम गोपाल चौधरी के अनुसार चितुआ नियंत्रण का क्रम में एक जना वन रक्षक सामान्य खैर विरत चलित बर्दिया में पांच सौ समय चितुआ का त्रास बर्ती देर वन कार्य चलित वरिष्ठ वन सहायक वन अधिकृत चौधरी के अनुसार कई बार शाम से हर समय चितुआ का आक्रमण में से जिला में 18 जना छान निर्वाचन से 15 जना खैर खुशिया कर डिविजन वन कार्य बर्दिया साउली हवा आठ समस्याग्रस्त चितुवा नियंत्रण में रेसियाको चलैनुला नियन्त्रण में देखेर चितुवा मध्ये कैसल अवस्था में दुई थोक चार वैश्याको कार्यालय जानकारी दिनुभयो।
0: सुकुमार चौधरी

का स्वतंत्र काफी मलयालम अपने पता इसे भी था सपा प्रमुख मलयालम छात्र से सपा प्रचार के नाम से भारी क्षेत्र से जो था इसे भी था।

0: चाहिँ अस्पताल बास गरिबस्ने प्रकारमा हात निकाल राखि अस्पताल सेवा 24 घण्टा डाक्टर के प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गराजाए
1: प्रत्येक दिन बिहान 8 बजे से सन्ध्या 6 बजेसम्म विशेषज्ञ फिजिसियन डाक्टर से प्याज छाती कलेजो नसा मुटु चेक जाँच गरिन्छ
0: प्रत्येक दिन नसा तथा निरु सर्जरी हात जोड्ने तथा जनरल सर्जरी प्रसुति सेवा नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा चेक जाँच गराजाए
1: 24 घण्टा डिजिटल एक्सरे पीडीएफ एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटुको एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याबको सेवा उपलब्ध भा प्यारालाइसिसको मुख बाँध बिना नसा दाग बेलक हातद्वारा अनि चल्ना बिरामी गर्नको लागि फिजियोथेरापी तथा एकुपेदर थेरापी विधिमा उपचार कैसी
0: नसा दागीले बिरामी बिना फिजियो

0: सर आपको महीना आई सको भोलिक आई सके किस्त तीर्ने दिन आई सको महीना यह महीना मेरे किस्त तीर दिन सही हो आग महीना मजना को किस्त तीर्चु
1: बाबू तब अप्ठारो भैस कति अप्ठारो पड़े बेला में ऋण लिखा लिंग तीर्न पर्च कर्जा को रूप में प्रवाह होने रकम सर्वसाधारण बचतकर्ता को संपत्ति हो कर्जा लीएर नियतवश कर्जा चुक्ता नगर कानूनी कार्य में पड़ने भाई पूर्व निर्धारित समय में कर्जा चुक्ता कर
2: युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र रेडियो पूर्वमा एफएम को सहकारी जनहित बजाई सन्देश
3: पानी
4: बढ़ते
3: विश्वास
4: ठोक।

0: गर्मी मौसम में रु तितिया ब्राह्मण से बदलकर छाता नदी कपड़ा सौंपने के ध्यान से ध्यान पानी पी शरीर मौसमी अंकुल खाई वो हर स्कूल के संगे जुड़ा बनेगा
1: आज इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरण विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बदिया जिला में संचालन हुई राहुल तिब्बत पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सफलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाभ जारी संदेश

में ये हमने हम लाइव ध्यान पर सुनने को बाउन औषधि छ चार समर्पण गरी रेकर्ड गराउनु होला। आगामी हप्ता प्रश्नको उत्तर खोजौला। साझा खबरमा हाम्रो फालो

0: साइकिल मोटरसाइकिल तो फिर अपनी मोटरसाइकिल देखी होती है।
1: मोटरसाइकिल
0: समय में जो उपचार कर सके थे सात दस लाख मरीज बताए सकते थे वो इन्हीं में से बिना मृत्यु दर के कम कर सकते थे। सात दस लाख मरीज में न उपचार केंद्र मरीज लगाई।

नेपाल राज्य मोर्चाका आवश्यक जानकारी लिने क्षेत्रका नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालका साथै द्वितीय कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदंश अनुसन्धान केन्द्र सहकारीमा डाक्टर इन्टरनेसनल एवं

तभी संतुलित खाना खाई, व्यायाम शब्द करी, धूमपान महिला मशीन न रही, तनाव नियंत्रण न करी, आज निर्णय कार्य जीवन अतरा, निशाना रोगों से बाजी स्वस्थ जीवन अब।

0: जीवन संभव नहीं होना पड़े या कर संरक्षण में हमारा सब ड्यूटी
1: असीम अमूल्य संपत्ति आजादी का कारण से चयन भर में भी बड़ा सट्टा उन्हें उससे बना आजादी नियंत्रण करना हमारा सब खुद का दायित्व कर्तव्य हो
0: किसी का बचे न
1: हमारा सब कुछ अपने बनवा क्षेत्र में आदमी रेखा बनेगा सुखा समय आया से आकर पाकर मरमत समारोह से सफाई करी
0: बीरी चुनौत मातृत्व का आदि कुटाई बनो में नहीं फाकी
1: बनो भीतर ग्लास वाले का काम नहीं करी
0: बनो में पिकनिक खाए गई है उच्छेद में नहर आदि भजन से बुटा के चेला छोड़ी
1: सुखा मौसम बनो में आगे अपना वस्तु सदाई लाइटा लेकर नहीं लेगी
0: बनो में आगे लगक देखने से लगभग बन कार्यालय सामुदायिक बन को प्रहरी खबर करी सब कुछ जना सुरक्षित तरीका से आगे बुटाई
1: मेरो संतान मेरो भविष्य को सहारा असल वैज्ञानिक बनोस् भन्ने सोच

0: तो काय चिंता करतो? पाचवी कुटुंबीय शिपायाचा केस हा करावा. बाकी पगार किसान तुर्की लड़के सिद्धार्थी पहले
1: आपको
0: यहाँ के नेता उनके भाव अनुसार सुंदर जी की तरह भी बैठो.

में यूट्यूब मेरा स्पार्ट करेंगे ना पानी का पास इस हम चुके लगे सितार का भेंट पर मुआवजा